सागर के सफर है, नदियाँ हैं हाथी के लिए, was ist ein Schmerz, Sehnsucht, er trug ich alles.